आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: याद हो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चोर

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं जो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधा राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं आप सबके लिए लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो मिक्स मस्ती। यस, मस्ती करने वाले हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और सबसे पहले मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते ही इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करना है।

बिल्कुल ऐसा जादू डाला रे, रेडियो हॉट स्टार ने के दीवाना बना दिया है, बिल्कुल है ना। वैसे सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई, सरफराज जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम है मेरे दोस्त मेरे भाईजान। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई मुबारक हुसैन जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं हमारे अंगद मिसाल जी। अंगद मिसाल जी, आपका गाना मुझे नहीं मिला है, वो लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने आ रहे थे इसलिए वो तो मुझे नहीं मिला। ओके, और हुकुम चंद जांगिर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ जुड़ने वाले कौन कौन से दोस्त हैं, ये है हमारे रवि जी, यानी आर के रवि जी, लिखते हैं कि दिन भर की थकान के बाद यह शाम आई है, अपने साथ सुकून का पैगाम लाई है, और ढलते हुए सूरज की हल्की सी रोशनी आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाई है। शुभ संध्या सभी दोस्तों को, बहुत बहुत वेलकम है आर के रवि जी। साथ ही साथ हमारे सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं हमारे यानी कमलेश चौधरी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और इनके बाद जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं, हमारे यानी कि प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बागाड़े जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी, बहुत दिन बाद आप आए हुए हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झा जी। और एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दीदी। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी बबीता जी। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और नीलेश वीरोकार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अभिषेक तिवारी जी, वेलकम है आपका भी। और अजय भगत जी, वेलकम करते हैं। और गजानन सरकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और रवि मोहड़े जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इनके साथ में जुड़े हुए हैं नाम है अशफाक अली जी, और नासिर जी, और साबिर जी, ये सभी जी, और असलम जी, ये सभी का वेलकम करते हैं, इनके साथ में जुड़े हुए वो सुन रहे हैं। ओके, और निकलस जी डेनमार्क से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं निकलस फ्रेंडेस जी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और यानी प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ रॉय परवत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का, आमना खान जी सुनना चाहती हैं, बहुत ही प्यारा गाना, दिल में बजी गिटार, इंजॉय करते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत से फीडबैक आए हुए हैं और मिसाल अंगद जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद। और अमन सर जी, आपने अभी कहा कि आपका गाना नहीं मिला, तो अमन सर जी अब मैं क्या करूँ? मेरा गाना बहुत अच्छा था, लेकिन आप मुझे कुछ नया ऑप्शन आप जरूर दीजिए। क्यों
0: बिल्कुल, आप अगर आपको गाने का लिंक है तो भेज दीजिएगा जरूर, क्योंकि मुझे आपका वो गाने जो आपने कहा वो नहीं मुझे मिल पा रहा है। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, और निशांत राय बोले जी लिखेंगे बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू अमना खान जी। और उनके बाद है आरिफ सिंधी जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, वेलकम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ओके ठीक है, मैं आपके बात समझ रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि फैंटास्टिक सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। अमना खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं अमना खान जी के पसंद बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आगे सुनकर। गोविंदा खंडारते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा गाने के लिए। और MD फैच लिखते हैं कि वाह धमाल मचा दिया, पहला ही गाना दिल खुश कर दिया है। और आमना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। और वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आमना खान जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे तीन दोस्तों का है, मंगेश देशमुख जी, मोहन नेवारी जी और समय ने राजमल हिवराली जी, मस्ती कीजिए फिलहाल।

और एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जो दोस्त मुझे यानी मैसेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से मैसेज नहीं कर पाते हैं, वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9135841232, यानी 9135841232 में वो मुझे कॉल करेंगे और मुझसे बातें करेंगे और अपने पसंद के गाने लाइव शो में सुनेंगे।

0: वेलकम बैक। और दूसरी बात ये कि और मैं कहता हूँ कि बहुत से दोस्तों ने ये क्या किया था कि दो दो आईडी बना लिया था। दो दो आईडी कहने का मतलब कि उनके एक नंबर से दो दो अकाउंट इन्हें बना हुआ था। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं उनका एक एक अकाउंट ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम अपडेट के बाद वो डिलीट हो गया है। और वो अगर आप खोलना चाहते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा। हाँ, अगर उस नंबर से मुझसे पासवर्ड देना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड मुझसे रीसेट करवा सकते हैं। मैं उनका पासवर्ड फिर से रीसेट करके उनको दे दूंगा, वो दोबारा ओपन कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को भी अपना अकाउंट को लॉगिन करने में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क ज़रूर करें। वैसे फीडबैक बहुत सारे हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे निकला जी लिखते हैं कि वाओ, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर अमन, वेरी गुड इवनिंग सर जी, वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी,
1: जय अमन सर जी, तीन दोस्त का मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, तीनों भाई को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम है आपका भी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम अमन जी और सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। और राजू राजेश कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी कैसे हैं और मुझ पर भी मस्ती छा गई है, बीकानेर से मैं राजू राजेश कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है राजू राजेश कुमार जी। और आपके मिट्टी के बर्तन के क्या हाल चले, अच्छे हैं ना, अच्छे बन रहे हैं ना। और शेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, राधे राधे, राधे राधे, वेलकम है आपका। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त मोहन निवारी जी, मंगेश दसमु जी, राजमल हिवराली जी के पसंद, मस्ती मस्ती सुनने को मिला, मजा आ गया सच में। और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कुंता बेनी जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि मिली जुली डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और मंगेश दसमु जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी का है, मीना इब्राहिम जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा नगमा, ओ शाकी शाकी शाकी, ओ माय गॉड, एंजॉय द ट्रैक, शाकी शाकी।

0: वेलकम बैक वन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और फीडबैक संध्या पटेल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा मस्ती वाला गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। आज के ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं तैयब अंसारी जी।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं चोलापुर से तैयब अंसारी बोल रहा हूँ, मैं भी जुड़ चुका हूँ
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है भाई तैयब अंसारी जी आपका। और रवि मोहाड़े जी लिखते हैं कि बेहतरीन नगमा, मस्ती मस्ती सुनने को मिला है, मजा आया है। और फीडबैक सुनते हैं सर्वेश भगत जी।
2: अमन सर जी, मीना इब्राहिम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा भी दो अकाउंट बना हुआ है, क्या सर थोड़ा देखिएगा तो
0: जी। आपका दो अकाउंट बना था, एक अकाउंट आपका डिलीट हो गया है, एक ही अकाउंट जिसे आप भेज रहे हैं वही सही चल रहा है। अगर इसका कोई भी यानी पासवर्ड भूल जाए तो दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझसे अपना पासवर्ड मांगिएगा, मैं आपको बता दिया करूंगा, मतलब यानी कि मैं रिसेट कर दिया करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हाँ, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। अगर

0: बोले जी आपके एक और अकाउंट ऑलरेडी है, अगर वो नहीं ओपन हो रहा है तो मुझसे उसका पासवर्ड रीसेट करवा लीजिए, क्योंकि ये अकाउंट एक ही अकाउंट रहेगा, एक डिलीट हो जाएगा आपका। और निर्मल राय जी लिखते हैं कि शुभ संध्या, में भी जुड़ गया, बहुत बहुत वेलकम है निर्मल राय जी आपका भी। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि एकदम झक्कास गाना है, सुनकर मजा आ गया है। और मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और फूलाबाग संजू भाव जी जुड़ चुके हैं, और हाँ बताना भूल गया था यार, आज इनके इनके यानी के सबसे यानी प्यारे छोटे बेटे इनके साहबजादे यानी कि स्वामी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप जियो हजारों साल और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मैं यही यानी दुआ करूंगा। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और ओके, और यहाँ निकला जी लिखते हैं कि अमेरिकन स्टाइल इंडियन पॉप हॉट बैड नॉट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी अच्छा ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और राधा कृष्ण को लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और फीडबैक सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया साकी साकी, बहुत शानदार गाना लगा अमन सर जी। और हमारे दोस्त मोहन न्यावारे जी का भी गाना हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अमन सर जी मैं सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं मेरा गाना फिर एक बार आपको भेज रहा हूँ। तो अमन सर जी इस गाने का समावेश आप ज़रूर करना, और अभी तक जितने भी गाने बजे हैं बहुत शानदार गाने अमन सर जी बजे हैं।
0: ओके, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए भी। गजानंद जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी के पसंद साकी साकी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको शानदार गाने के लिए। कुंता बहनी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी, थैंक यू सो मच। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, दूर होकर भी ये बहुत ही करीब होते हैं, जो निभाते हैं इन सच्चा रिश्ता वो हमेशा वही लोग तो इन सच में खुश नसीब होते हैं। और लफ्जों में मैं क्या लिखूं, मैं उस एहसास को जो बिना कहे ही सब बयां कर जाता है। और कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि जिंदगी में की दूर रहकर भी दिल के पास महसूस होते हैं जी। और राय पर्वत जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि ये मजबूरी के साथ कभी मुझे प्यार मत करना, क्योंकि एहसास करके मुझे कभी खुशियाँ दान में मत करना, और दिल कहे तो सच्चा प्यार करना वरना झूठ ही नहीं, क्योंकि अफवाहों से मुझे बदनाम ना करना। अच्छा ओके, और ओके अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ गजानंद जी का ग्रुप का गाना है, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना देगा। जनन जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे निकला जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और एमडी फ्राई जी लिखते हैं कि एकदम जबरदस्त गाना, मजा आ गया है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, गजानन सुलोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फूले भक्त संजू भाव जी का लड़का का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी को, इस पर खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही मैं दुआ करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और रॉय पावत लिखते हैं कि मुंडा यानी कि चेहरा शांत, दिल में तूफान रखते हैं, हम अपने अंदाज में अलग पहचान रखते हैं, मुंडा है साहब इसलिए अपना रुतबा महान रखते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही झकास डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ, क्या कहते हैं।
2: कभी पी थी मैंने चाय किसी के हाथ की,
0: अच्छा,
2: सांसों में इलायची की महक आज भी है। आरजे अमन सर जी, नमस्कार। मैं कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूँ और गाना चल रहा है, मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त, मस्त मुंडा है, तो रेडियो हॉट स्टार भी मस्त है, लिसनर भी मस्त है, बाकी सब मस्त है।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और ताहिर क्या नाम है इनका, यानी कि तैयब अंसारी जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या नाइस सॉन्ग है। और यहाँ पे निकला जी यहाँ लिखते हैं कि व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्राम टुडे मिस्टर अमन, थैंक यू सो मच, वेलकम सर जी आपका। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही शानदार लगा है, मस्त मस्त मस्त एकदम मजा आ गया है। रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि मैं मस्त पूरी तू भी मस्त, मस्त मुंडा है, क्या पसंद है। और कुंता जी लिखते हैं कि अनन्या गजानन जी सुलकार जी की ग्रुप डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, सभी को धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हुकुम चंद जी का है, हुकुम चंद सुनना चाहते हैं रफ्ता रफ्ता, एंजॉय द ट्रैक।

0: हमारे पसंद को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि दिस सॉन्ग इज हिट्स डिफरेंट। अच्छा, और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं। अरुण मंडल जी राजकोट से बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि रफ्ता रफ्ता गाना मस्त लगा है जी, मस्त, एकदम मस्त। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग जी, बिल्कुल। और ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: वाह, एकदम जबरदस्त, दिल खुश करने वाला गाना, डांस करने का मिजाज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: बिल्कुल डांस कीजिए। ओके, और गजानंद जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगड़ जी के पसंद शानदार जी। हुकुम चंद जांगड़ जी की ये पसंद मुझे सच में बहुत पसंद आई है। और हुकुम चंद जांगड़ जी, आप बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, बिल्कुल। और एक गाना और सुन सकते हैं आप। राय पर्वत लिखते हैं कि दिल की बात लफ्जों में कहाँ बयां होती है, और तुम सामने हो तो धड़कन इजहार करती है, बिल्कुल, क्योंकि इन बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना, इसीलिए। शेख मोहम्मद इन ताहिर जी लिखते हैं कि रफ्ता रफ्ता वाओ, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गाना है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अंधेरे का एहसास शाम होने से होता है, और नशे का एहसास जाम से होता है, और यूं तो बहुत दोस्त हैं दुनिया में, पर दोस्ती का एहसास आपके नाम से होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मीना जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत सुंदर है, अमन जी धन्यवाद देते हैं, लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और तैयब अंसारी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और फूल भक्त संजीव भाव क्या कहते हैं।
2: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी, मैं फूल भक्त संजीव भाव, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया और धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने मेरे बेटे चिरंजीव स्वामी पर जो आपका प्यार बरसाया, और रेडियो हॉटस्टार के माध्यम से आपने उनको उनके जन्मदिवस की बधाई दी, तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। और हमारे आदरणीय सर्वेश भगत अंकल जी, इनका भी प्यार हमारे बेटे तक पहुँच गया है, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद बोलूँगा। और आज दिन भर अपने ग्रुप में सभी श्रोताओं ने, मेरे पूरे हॉटस्टार परिवार ने मेरे बेटे पर अपना प्यार बरसाया, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे, मैं ऐसे ही कामना करता हूँ। अमन सर जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बेटे को जन्मदिवस की ढेरों ढेरों बधाई दी। और अभी जो आपने हमारे ग्रुप फरमाई चलाई सर, तो आपको मैं दिल से लाखों लाखों धन्यवाद बोलूँगा। आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगा दी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी फरमाइश चलाई। और अभी जो गीत चला है हमारे मित्र हुकुम चंद जी, इनका गीत भी सर हमें अच्छा लगा। और हमारे गीत के पहले जो बैक टू बैक दो गीत चले सर, वो गीत भी आज के कार्यक्रम में सुपर और सुपर सुपर रहे। आज का कार्यक्रम स्टार बॉलीवुड मस्ती एकदम मस्ती भरा और अनोखे अंदाज में हो रहा है। आपकी प्रस्तुति अनोखे अंदाज में हो रही है सर। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी के साथ मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही सुपर डिमांड है जी, दिल खुश कर दिया भाई ने। और हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारे फरमाइश को प्ले किया। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं किसरों की महफिल बातों की बहार, आरजे अमन सर जी लाते हैं खुशियों का उपहार, रेडियो हॉटस्टार की धुन पर झूम उठे ये जहां, आपकी आवाज जैसा सुकून मिले भला और कहां। संजू भाऊ, यानी बेटे स्वामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और शॉर्ट आउट में भी आप अपना वहां पे बधाइया दे सकते हैं, बिल्कुल। फिलहाल अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप जी का है, सुनना चाहते हैं ये सिर्फ संडे को प्यार करते हैं। अच्छा,

0: ओके ओके ओके ओके, मैं संडे को इंतजार कर रहा हूँ, फिलहाल फीडबैक शामिल कर देता हूँ। और तैयब अंसारी जी लिख देंगे, बहुत ही प्यारा नाइस सॉन्ग है, सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुनते होंगे। और राय पापा जी लिख देंगे, अमन जी आपका नाम दिल में उतर गया है, देखते देखते ये दिल आपका हो गया, वाह क्या बात है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आता है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये करती हूँ प्यार संडे को, सिर्फ मजा आ गया इस गाने को सुनकर, थैंक यू सो मच। अनिल कश्यप जी और निकला जी लिखते हैं कि और रियली गॉड, ये गुड सॉन्ग है, आई लाइक इट ओके। और ये फीडबैक
1: जी अमन शाह जी, अनिल कश्यप जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि व्हाट ए मास्टर पीस सॉन्ग। अच्छा, और यहाँ पे संध्या पटेल लिखते हैं कि ये संडे को सॉन्ग वाला सुपर डुपर हिट लगा है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और अकुंता बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है। और मीना जी लिखते हैं कि ये कविता कृष्ण मूर्ति की वॉइस मुझे बहुत ही शानदार लगती है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया मेरा गाना बजाए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप सिर्फ संडे को प्यार करते, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। और कहना ये भी है कि ये आप ही के लिए था, क्योंकि संडे के दिन आप दो बार आते हैं शो करने के लिए। अच्छा। तो संडे को तो विशेष आप ही आते हैं प्यार करने के लिए, तो आप ही को डेडिकेट था ये गाना।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच आपका भी। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि ये करती हूँ प्यार संडे को, मजा आ गया सुन के। अरे मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ संडे को, बाकी दिन क्या करते हैं, इसलिए ना। जाकिर खान जी लिखते हैं कि यानी करती हूँ प्यार संडे को, बहुत अच्छा लगा मुझे गाना। अजय भगत जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। और यहाँ पर राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और राय पर्वत लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, विशालंगा जी का है, शहर की लड़की, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक, और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं पहले?
1: जी अमन शाह जी, मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और निशांत राय बोले, लिखते हैं कि सो ब्यूटीफुल डिमांड, मजा के सुन के। और अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी गाँव की भी लड़कियाँ भी का अंदाज भी शहर जैसा ही हो गया है। हाँ अब तो हो गया है बिल्कुल। कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा, और यहाँ पर राय पर्वत लिखते हैं कि अमन जी मैं भी एक टीचर हूँ, अच्छा बट प्राइवेट टीचर हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप है ना टीचर, बहुत बड़ी बात है। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त मिसाल अंगद जी के पसंद बेहद ही लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया सुन के इसी बात पर। अच्छा ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, हमारे गाने में जितने लोगों ने फीडबैक दिए उन सभी को हमारे तरफ से थैंक्स। और विशाल भैया का जो गाना चल रहा है शहर की लड़की, तो कल 25 लड़कियों के बीच फंसे हुए थे और आज भी लड़की का जो सपना सा इनके ऊपर हो गया है, तो कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाने को, और ये भी एंजॉय करें, अच्छा गाना लग रहा है ये भी।
0: बिल्कुल, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी हमेशा अलग गाने लाते हैं चुनकर, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल कमीज तेरी काली, हजारों फूल वाली, फीडबैक भी बहुत सारे हुए हैं। निर्मल राय जी लिखते हैं कि अमन जी बिहार के इन किशनगंज जिले में गर्मी टांडो मचा रहा जी, आज यहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा थी। ओ माय गॉड, मैं तो आज यानी पसीने से नहा गया था एकदम स्कूल में, मतलब आज मतलब थोड़ा सा भी राहत नहीं मिली, यहाँ तक कि हवा भी नहीं बह रही थी कि कुछ राहत मिले। बिल्कुल बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी आज, पहली बार मतलब इस यानी साल का मुझे सबसे ज्यादा गर्मी लगा है आज, बहुत ज़्यादा। और इधर थोड़ा बारिश, इधर भी नहीं है बारिश, हम तो हम खुद इंतजार कर रहे हैं, अगर आएगी तो मैं आपके तरफ जरूर भेजूंगा। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और यहाँ पे निकला जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है, मज़ा आ गया सुन के इस गाने को। और इनके बाद ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और निशान राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फीडबैक।
2: नमस्कार आदरणीय अमन सर जी, मैं हीरामन खिराड़े वासिम महाराष्ट्र से
0: वेलकम है।
2: इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ, और अभी जो फरमाई चल रही हमारे परम मित्र मिसाल अंगद जी, इनकी सुपर से ऊपर फरमाइश थी सर, लड़की शहर की लड़की, मैं सुन रहा हूँ सर आरजे अमन सर जी के साथ, धन्यवाद।
0: ओके, लेकिन ये बताइए आप इतना दिन थे कहाँ? और महाराष्ट्र के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो गायब हो गए हैं, बिल्कुल बहुत से दोस्त जो, मतलब अब सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से यानी मैक्सिमम दोस्त यानी कि 90% दोस्त मुझे दिख नहीं रहे हैं, मात्र मुझे 10% ही दोस्त दिख रहे हैं, ये सभी लोग कहाँ गए भाई, आप लोग कहाँ हैं, मैं सभी को मिस कर रहा हूँ। ओके, और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: अमन भैया गुड इवनिंग, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, लाजवाब प्रस्तुति और सभी दोस्तों का एक से एक बढ़कर गाना, और ये गाना जो चल रहा है इलार उनकी आवाज़ में कमीज मेरी काली, बहुत ही अच्छा, फरमाइशकर्ता को दिल से धन्यवाद है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये फीडबैक देने के लिए। मोहन हमारे लिखते हैं कि अमन जी नमस्कार करते हैं और गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गाना, और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि मिसाल अंगद जी की डिमांड, शाही जी की डिमांड और अंसारी जी की, मतलब सभी की पसंद बहुत अच्छी लग रही है, धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी लिखते हैं कि ये नाइस सॉन्ग मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अच्छा ये हमेशा अनोखे गाने लेके आते हैं भाई, ये फीडबैक।
4: नमस्कार, अभी आपने नटखट का नट देखा खट नहीं देखा, तो वैसे ही अभी तक आपने हॉट स्टार का हॉट देखा, स्टार कहाँ देखा, तो सुनते रहिए जो सबको दीवाना बना दे,
0: धन्यवाद। आते हैं अनिल कश्यप जी और अशोक इनपाल जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। ओके, और यहाँ पे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि कमीज मेरी काली, डांस सुन ये गाना सुनकर तो यानी कि डांस करने का मन करने लगा है। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि इनको मैं सबसे विनर बना दीजिए अमन सर, बहुत ही सुंदर गाना है, अच्छा। ओके, और राय परवा जी लिखते हैं कि अब दवा जब असर ना करे तो नजरें उतारती हैं, और माँ है ना साहब ये हार कहाँ मानती हैं, जी बिल्कुल सही कहा। अगला जो डिमांड सुनिए ना नंदलाल जी का, ये भी पसंद आने वाला है, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल, अगर इस गाने के लिए आपको सॉन्ग विनर ना बनाया गया तो सच में ना इंसाफी होगी। नंदलाल जी आज फिर बनते हैं आप सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सच में गाना बहुत प्यार लगा, दिल को छूने वाला। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हुए हैं और यहाँ पे सुरिंदर पाल यानी भोला जी जुड़ चुके हैं पंजाब से, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार कह रहे हैं सभी दोस्तों को और फीडबैक सुन लेते हैं।
1: जय अम्मा सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू सर। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। मोहन वाली लिखते हैं कि ये मस्ती भरा गाना मुझे अच्छा लगा था, अच्छा इससे पहले वाला, ओके। और शाहिद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, साथियों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। निशांत राय बोले लिखते हैं कि सो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वाह। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की च्वाइस बहुत ही प्यारा लगा है, मजा आ गया सुन के। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है इंस्टेंटली। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, नंदलाल यादव जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है नंदलाल जी, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नंदलाल जी का गाना मस्त लगा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: वाह वाह अमन सर जी, नंदलाल यादव जी का सॉन्ग बहुत ही सुपर से ऊपर, और विनर बनने के लिए मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन देता हूँ सर। और हम सभी साथी मित्र सर महाराष्ट्र के कुछ अपने अपने खेती के काम में जुड़ गए सर, इसलिए कोई जुड़ रहा है कोई नहीं जुड़ रहा है सर, और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ सर, कभी कभार भी जुड़ता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
2: और आज हमारे खास परम मित्र बेस्ट रिपोर्टर फुले भक्त संजय भाऊ, इनके लड़के स्वामी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हमारे पूरे खिराड़े परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की अनंत अनंत बधाई,
0: धन्यवाद।
2: मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: वेलकम है सर जी आपका भी। और राय पर्वत लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग है, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं गजब का सॉन्ग था ये, सच में मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, आरती तिवारी जी सुनना चाहती हैं इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, आरती तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि इस जहाँ की नहीं तुम्हारी आंखें सुपर सॉन्ग है। और आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने की डिमांड है और सुनवाने के लिए बहुत शुक्रिया। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस सॉन्ग है। और मोहन हमारी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि इश्क करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी किया था बड़े जोर के साथ, मगर अब करेंगे जरा गौर के साथ, क्योंकि यानी कल देखा था मैंने उसे किसी और के साथ। और क्या ही कहे भाई, सच में आप मतलब कहाँ कहाँ से लाते हैं। मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है इस गाने की, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: नमस्ते अमन सर, मेरा गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी, मैं हर सप्ताह विनर बन जा रहा हूँ, मेरा ये सौभाग्य है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी फीडबैक दिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मैं नंदलाल यादव,
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अशोक पाल लिखते हैं कि इस गाने में कुछ अलग ही जादू है। जी बिल्कुल। और कुंदा जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है। आरती तिवारी जी थैंक यू सो मच। इसी बात पर जो डिमांड है हमारे दिनेश कुमार राय जी का है, और दिनेश कुमार राय जी सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, दिल में हो तुम आंखों में तुम। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
3: ओह माय गॉड, आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अब कुछ भी कहिए मेरे पास तो अच्छा जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और आरती तिवारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे गजाना सुनकर जी लिखते हैं कि दिल में हो तुम, आंखों में तुम, शानदार गीत सुनकर दिल खुश हो गया है एकदम। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वाह व्हाट अ सुपर हिट सॉन्ग, वाह मजा आ गया सुनके इस गाने को। और आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह ये गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। ये है हमारे मीना जी यूएस से हैं। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि मोहब्बत की शाम जला कर देख, दिल की दुनिया सजा कर तो देख, और तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे नजरें मिला कर तो देख। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: सर जी
0: जी
1: दिल में हो तुम वाला गाना सुना के बहुत अच्छा गाना सुना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है
0: जी, बिल्कुल।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी आपने कहा था कि आप लोग कुछ अलग कीजिए, शायरी दीजिए, और इसलिए मैंने ग्रुप से शायरी की यानी कि बहुत शार करवा दी है, अब आप यानी कि पापा के थक जाएंगे जी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंतजार में हैं। और आए यानी पर्वत जी लिखते हैं कि भाई दिनेश जी का अंदाज थोड़ा शरारती है, यानी कि पर दिल से एकदम जबरदस्त है, ओके जी। और ओम ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका, सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और अनिल कश्यप जी यहाँ लिखते हैं कि बहुत ही वाव, बहुत ही प्यारा गाना है और नाइस सॉन्ग है। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया है। और अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, ओके। और बबीता देवी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अशोक शिवानी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग ब्रो, वेरी नाइस सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड जी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ते हैं कि मुझे बस इतना बता देना, हाँ हाँ बिल्कुल मैं गाना प्ले कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए भाई, अपना टेंशन मत लीजिए, मैं कह दिया कि प्ले कर दूंगा मतलब प्ले कर दूंगा। अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी का है, और काजल झक्का जी क्या सुनवाना चाहती हैं सुनते हैं।
2: काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, तुझे भी एहसास हो सब कुछ मेरी तरह, तुझे भी एहसास हो सब कुछ मेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नज़र अंदाज कर दूँ तुझे तेरी तरह, जब मैं नज़र अंदाज कर दूँ तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सो जाऊँ बेपरवाह तेरी तरह, और मैं सो जाऊँ बेपरवाह तेरी तरह। नमस्ते, गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी बिहार से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग मैं भेज दे रही हूँ। और ये सॉन्ग मैं सुना दूँगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, और बंजिका जी को, रेडियो हॉट स्टार के जितने दोस्त हैं, जितने दीवाने दीवानियाँ हैं, सभी को सुना दूँगी। बाय,
0: ओके जी, एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कीजिए, काजल झक्का जी।

0: क्या गाना है। बिल्कुल तू कहबू तो जिये बेरानी, तू कहबू तो हम मर जाए भो। और रवि जी लिखते हैं कि हमने अपने ग्रुप वालों को यानी कि मतलब सिद्धू पाजी से यानी कि ट्रेनिंग करवाए हैं। जी बिल्कुल, सभी शायर बन गए इसीलिए है ना। और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और फूलाबाग संजू भाव जी लिखते हैं कि दिल में हो तुम आंखों में तुम, ये किसकी फरमाइश थी, अब तो मुझे देखना पड़ेगा किनकी फरमाइश थी, वहाँ भी देखना पड़ेगा। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि ये सितारों से भरी हुई मुझे रातें पसंद है, और दूर से सुनी हुई उनकी बातें पसंद है, और तारीफ के काबिल तो उसके बाल भी हैं, पर मुझे ज्यादा उसकी आंखें पसंद है। आहा क्या बात है भाई, ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी के पसंद एकदम बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और निशांत राय बोया लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना है, मजा आ गया सुन के। और संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह भोजपुरी सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया है। और राय प्रभा जी लिखते हैं कि ये काजल जी के पसंद एकदम झक्कास। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि मतलब इस गाने का इमेशन बिल्कुल कमाल के हैं जी। और अशरफ शिवानी जी लिखते हैं कि हर टचिंग सॉन्ग है, लव फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सॉन्ग। अमन भाई अच्छा ऐसा है क्या। और हमारे ये क्या नाम है सुरिंदर पाल यानी भोला जी लिखते हैं कि थैंक यू काजल झक्का जी इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। और यानी कि पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है काजल झक्का जी का, बिल्कुल। और भोले भाई संजू भाव क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अमन सर जी, अभी जो फरमाइश चल रही है मेरी छोटी और प्यारी चुलूली बहन काजल झक्का जी इनकी, इनके फरमाइश का गीत भोजपुरी था सर, समझ में तो नहीं आया।
0: अच्छा,
2: पहले आपने एक गीत चलाया सर, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे, ये गीत के फरमाइश करता का नाम नहीं सुन पाया सर।
0: उनका नाम है दिनेश कुमार राय।
2: अच्छा लगा। और उनके पहले आरती तिवारी जी, इनकी आपने फरमाइश चलाई सर, उनके पहले आज के सॉन्ग विनर नंदलाल यादव जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले शाहिद अंसारी जी, इनकी आपने फरमाइश चलाई सर। अब तक चले सभी गीत जो बैक टू बैक चले हैं सर, सुपर और सुपर से ऊपर, बोले तो ललंटाफ रहे सर।
0: अच्छा।
2: और सभी गीत आज के कार्यक्रम में मुझे अच्छे लगे, और आज का कार्यक्रम स्टार बॉलीवुड मस्ती एकदम सुपर और सुपर सुपर हो रहा है, रेडबुल हो रहा है सर, मज़ा आ रहा है सर, सभी को शुक्रिया धन्यवाद बोलूँगा इतना अच्छा पार्टिसिपेट करने के लिए। रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी के साथ मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: वेलकम है आपका भी। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि भोजपुरी सॉन्ग बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी का पसंद शानदार लगी है, बिल्कुल। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि ओके। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
0: अच्छा।
3: थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
0: क्या बात है भाई निर्मल राय जी, अच्छा बोला आपने। रवि जी लिखते हैं कि अरे नाम की जरूरत ना पड़ेला पहचान खातिर, हमने के अंदाज ही काफी बा, दुश्मन के थर थर यानी कापे ला जब यूपी बिहार के रंग बाज आवेला। अच्छा ये बात बा। और फूलाबाग संजू भाव जी लिखते हैं कि अमन जी कार्यक्रम में थोड़ी शायरी क्या कीजिए। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, ये क्या कहते हैं सुनते हैं पहले।
4: आदरणीय अमन सर जी, भोजपुरी गीत बहुत ही सुपर से ऊपर था, ये सुनने में हमें तो समझ नहीं आया।

0: कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ओके क्या अगर तुम यानी बोलोगे कि तू यानी जियो तो जियोगे, कहोगे यानी मर जाओ तो यानी मर जाएंगे, मतलब इतना प्यार है, ये इस गाने का मतलब है। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि यानी कि तुहार मुस्की में ऐसा जादू बा कि दिलवा हार जाला, और तू सामने आ जेबू तो यानी मौसम में निखार आ जाला। वाह वाह क्या बात बा, ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: तू कहबू तो जियो बेरानी, तू कहबू तो हम मर जाएगी, गाना इतना अच्छा लगा। और भोजपुरी में अगर हम बोली तो ये गाना इतना बढ़िया लागल है कि हम बाइक रोक के कमेंट कइले बानी।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बा राहुल। और यहाँ पे मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि अर्जमन जी सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है। और विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं गाना बहुत ही अच्छा लगल। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि सुनील कोंडे जी का, और सुनील कोंडे जी सुनना चाहते हैं ये गाना।

0: साजन की आंखों में प्यार गाना चलेगा और ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि इंतजार भी बड़े कमाल की चीज है और इतनी तो यानी कि मैजे तो तेरी सूरत भी नहीं देखी जितनी यानी कि तेरे इंतजार में मैंने घड़ी देखी है। अच्छा ओके, और मिसालंगा जी फीडबैक में क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसा अंगद और अमन सर जी आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाना समाप्त होने के बाद ही फीडबैक देने वाला था लेकिन टीवी के सिग्नल गए थे तो मैं वो सिग्नल के लाने की कोशिश कर रहा था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसलिए मैं फीडबैक कुछ देरी से दे रहा हूँ लेकिन अमन सर जी मेरे गाने में जो फीडबैक

0: जिस दोस्तों ने दिया है कि वो कहाँ, उस दोस्तों ने कहा था कि वो कल 25 लड़कियों के बीच में फंस गए थे अमन सर जी, उनका नाम
1: आपका
0: होगा, हमारे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं अमन सर जी। तो अमन सर जी, अभी तक जितने भी गाने आपने सुनवाए बहुत शानदार गीत सुनवाए, और अभी जो भोजपुरी गाना आपने सुनवाया ये तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि भोजपुरी गाना समझ में कम आते हैं लेकिन सुनने को इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसे लगते हैं कि ये गाने सुनते ही रह जाए। अमन सर जी, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार है और हम पूरा कार्यक्रम सुनेंगे।
1: धन्यवाद आपका भी। और चंदे पटेल जी लिखते हैं वो ओल्ड इज गोल्ड सुपर पसंद, सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: अरे अमन सर जी, सुनील कुंडे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका भी। और रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि ये साजन तेरी एक मुस्कान दिल चुरा लेती है और तेरी हर अदा मुझे अपना बना लेती है। साथ ही साथ यहाँ पे अशोक पाल लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद चल रही है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि सुनील कुंडे जी की पसंद बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और कुपुर चंद जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे विभूति भूषण जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। और ओके, और यहाँ पे सुनील कुंडे जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पकड़ा, जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो आज के यानी प्रियंका जी का है। और ये प्रियंका जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा गाना जो मेरा फेवरेट है।

0: वेलकम बैक। और मेरे साथ यहाँ पे लाइव चैट में यानी चैटिंग कर रहे हैं हमारे इट्स कुमार जी, नागेश्वर धाकर जी और नेहा जी। बहुत बहुत सभी का वेलकम करते हुए हैं और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और ये फीडबैक क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग चॉइस है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ईश्व भगत जी लिखते हैं कि सुना है कि तेरे शहर की वफा मिलती है, वहाँ टूटे हुए इन दिलों की दुआ मिलती है, और बस यही सोच कर आए थे हम तेरे शहर पे, लेकिन यानी पर तो यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या? और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि आर के रवि जी नहीं थे, यानी प्रियंका जी के पसंद थी ये। और ओके, और यहाँ पे राय पर्वत जी लिखते हैं कि हिंदुस्तानी मुंडा हूँ, बातों में दम रखता हूँ और दिल में प्यार और चेहरे पे मुस्कान रखता हूँ। अच्छा। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि अमन जी आपके गाने के साथ गुनगुनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओह थैंक यू सो मच सर जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस गाने का डिमांड ने तो दिल खुश कर दिया है, धन्यवाद देते हैं उनको। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, थैंक यू सो मच प्रियंका जी आपका। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं गहरा हुआ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इन प्रियंका जी को। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ये यानी दिगंबर जी का है, सुनते

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या करते हैं?
1: आरजे मानसा जी, दिगंबर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी है आपका। और निशांत राय बोले, लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। कुंता जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर डिमांड, दिगंबर जी आपकी थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं दिगंबर जी के पसंद बहुत ही लाजवाब लगा है। और कपूर चंद जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं मजेदार गाना चल रहा है। जी बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे चार दोस्तों का है, अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी और सैयद यूनुस जी, सुनते हैं।
2: नमस्कार अमन सर, नमस्कार। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार म्यूजिक मस्ती।
0: हाँ।
2: तो मुझे एक मस्ती भरा गीत सुनना है। फिल्म का नाम है इंडियन बाबू और गाने का बोल है दिल मेरा दिल मेरा दिल। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे। और इसी गाने में जैसे कि सर्वेश भगत जी भी शामिल हैं तो इनका भी ऑडियो सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते,
0: नमस्कार।
3: जी आज हमारा फरमाइश का फिल्म है इंडियन बाबू
0: जी
3: और गाने का बोल है दिल मेरा दिल मेरा दिल, यही गाने का बोल है।
0: ओके।
3: हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, अंदर प्रकाश, सुन कुमारी, मुन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मुनत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी और आर जे रत्ना जी, आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिएगा।
0: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: दर से यार मिलता है और राधा कृष्ण को बीते लाजवाब पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और निशांत राय बोले जी आपका मैंने यानी कि अकाउंट को रीसेट करके भेज दिया है, अपना व्हाट्सएप को चेक कर लीजिएगा। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी के वचन शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और उनको अशोक देशमुख जी
1: धन्यवाद। अमन सर आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिया, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि जिंदगी की हर शाम हसीन बना दो, जो मिले लम्हा उसे उसे खुशियों से सजा दो। और शिकायतों का तो दौर तो चलता ही रहेगा, और कभी मुस्कुरा कर तो इन दूसरे को भी मुस्काना सिखा दो जी बिल्कुल। और कपूरचंद जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और ओम राय लिखते हैं कि ये निक्की पर्वत जी के लिए है कि तू दूर गया और दिल भी आज उसी जगह खड़ा है, और तेरी याद यानी कम नहीं गई, बस दिल चुप हो गया है और तू मुस्कुराया नहीं, और मेरी तो रात ही रो पड़ी है। रास्तों पर हम चले थे, अब वहाँ सन्नाटा रहता है। अच्छा, और राय पर्वत जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के गाने को। और कुंता जी लिखते हैं कि ये चारों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे किन का है, यानी कि कमलेश चौधरी जी का। और कमलेश चौधरी जी सुनना चाहते हैं मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पता है भूभीत भूषण शरण जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब पसंद है इस गाने की। और सर्वेश भगत जी
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा चार भाई का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए। अशोक देशमुख जी, सैयद यूनुस जी, आत्माराम पाटिल जी और हम चारों भाई का फरमाइश चला दिए। थैंक यू, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं मुझे नींद ना आए, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा दिल फिल्म का। और मीना जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और एस खानम जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। लिखते हेलो एवरीवन, वेरी नाइस सॉन्ग, अच्छा जी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। इसी बात का अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो एसके मोहम्मद ताहिर जी का है और सुनना चाहते हैं, यानी कि क्या दिल ने कहा क्या हमने सुना। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है सभी दोस्तों का। और यहाँ पे निशांत राय बोल जी लिखते हैं कि क्या दिल ने कहा, वेरी नाइस सॉन्ग है। और एस खानन जी लिखते हैं वाह, अच्छा ओके, ऐसा क्यों आपको यानी कि कह रही है, जरा जरूर बताइएगा प्लीज़। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये क्या दिल ने कहा, क्या हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, गाना है। और बाबूलाल जी लिखते हैं अमन सर जी हम भी जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका भी। और राधाकृष्ण को भी बहुत ही शानदार डिमांड है जी, इसी बात पर जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ। और ये हमारे यानी कि प्रमोद जी का है, और प्रमोद जी सुनना चाहते हैं बहुत ही अनसुना गाना, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: और ये गाना सच में मैंने पहली बार सुना है, तो इनको बनाते हैं आज के सॉन्ग विनर। बहुत बहुत बधाई हो, आप भी एक गाना और सुन सकते हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत प्यारा है, और फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। ओम नारायण जी लिखते हैं कि अमन जी आपके लिए एक शायरी है, लिखते हैं कि शोर से भरी इस दुनिया में, यानी कि जैनक चैन कौन दे, और हर जख्म को हमारे इन मरहम को चैन कौन दे, और खुदा ने नाम ही जिसका अमन रखा है, अब इस दिल को उसके सिवा सुकून कौन दे। आहा क्या बात है, क्या कह दिया आपने। और कुंता जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं, दोस्त आदरणीय प्रमोद जी के पसंद, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, मजा आ गया है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, सच में दिल खुश करने वाला ये गाना। निशांत राय बोल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया है। राधा कृष्ण को लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं प्रमोद जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये
2: अमन भैया विशाल भैया कमेंट कर रहे थे कि 25 लड़कियों वाले बात थे कि कोई भाई हमको कमेंट किए, तो इसलिए वो आज से हमारे दोस्त बन गए। तो दोस्त तो बन गए, लेकिन उनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा।
0: बोलिए बोलिए।
2: कि दोस्त दोस्त का प्यार होता है।
0: बोलिए क्या हुआ, आप पहले एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा प्लीज। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हम अपने बाबूलाल अंजाना जी का सुनवाते हैं, ये भी अनसुना गाना लेके आते हैं। और इसके बाद इट्स कुमार जी का गाना प्ले होगा।

म्यूजिक आया हुआ है, यानी कि मुझसे गलती हो गई है गाना डाउनलोड करने में। कोई बात नहीं भाई, अब तो गाना डाउनलोड मैंने नहीं किया इस समय, फिर से मुझे एक काम करता हूँ, फिलहाल हम यानी कि गाना प्ले करें इट्स इन कुमार भाई जी का, फिर आपका गाना मैं प्ले करता हूँ।

0: इतना बड़ा कांड हो गया, और बताइए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना ये फीडबैक।
1: तुम्हें चाहना इबादत है मेरी, तुम्हें चाहना इबादत है मेरी, तुम्हें पाना किस्मत है मेरी, तुम्हें चाहना इबादत है मेरी, तुम्हें पाना किस्मत है मेरी, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, क्योंकि तुम ही तो जिंदगी हो हमारी, तुम ही तो जिंदगी हो हमारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी, गाना बजा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और आपको भी थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी से, और आज का प्रोग्राम बोले तो
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और फूल चंद्रबाब क्या कहते हैं?
2: अमन सर जी, कुछ देर पहले हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी और हमारे मित्र सैयद इनू जी, इन चारों दोस्तों के आपने मिलीजुली फरमाई चलाई सर, उनका गीत हमें बहुत अच्छा लगा, उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा गीत सुनवाया और हमें अपने गीत में याद भी किया, और उनके पहले उनके बाद में अपने एस के मोहम्मद जी, इनकी फरमाई चलाई सर, उनके बाद में प्रमोद कुमार जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, और अभी जो फरमाइश चल रही है बाबूलाल अंजाना जी इनकी, इनका गीत, सभी के गीत बैक टू बैक सुपर रहे, मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमें अपने गीत में याद करने के लिए। और आज का कार्यक्रम सर बहुत ही अच्छा हो रहा है और मज़ा आ रहा है सर, कुछ देर पहले नेटवर्क इशू था सर, तो अच्छा। कुछ श्रोताओं का नाम और उनकी फरमाइश नहीं सुन पाया सर,
0: कोई बात नहीं,
2: और अभी नेटवर्क का इश्यू ओपन मतलब के सॉल्व हो गया है सर, तो कार्यक्रम अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना रहा है, आरजे मंजे के साथ, धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और कुंता जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही सुपर हिट चल रही है, और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
3: आरजे अमन सर जी, गोविंदा खंडाले जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू सर। और यहाँ पे यहाँ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग है, मज़ा आ गया सुन के। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि शानदार नगमा है। इससे बात लगला जो डिमांड है दो दोस्तों की, एक यानी कि परवेज आलम रफीगंज से, और उनके बाद है निशांत राय बोले जी, दोनों सुनना चाहते हैं दीवाना मैं चला, इंजॉय की उसे ढूंढने।

बिल्कुल दीवाना मैं चला, उसे ढूंढने बड़े प्यार से। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा डिमांड को प्ले किया है और उन्होंने एक और गाना भेज दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके गाने को। और हमारे क्या हुकुमचंद जी भी आज जो विनर बने थे, उन्होंने भी गाना भेज दिया है। लेकिन मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं जरूर गाने आप दोनों के गाने को मैं प्ले करने वाला हूँ। ओके, और फिलहाल फीडबैक भी मेरे पास है। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुकी है, लिखते हैं कि दीवाना में चला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि उदित नारायण की आवाज़ में बहुत ही शानदार गाना है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और शांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और MD परवेज आलम लिखते हैं थैंक यू अमन जी गाना प्ले करने के लिए। अच्छा, ये सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, सिर्फ सुनते रहते हैं, एक ही बार फीडबैक देते हैं आकर जब गाना उनका प्ले होता है। और फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किनका है, हमारे अरुण मंडल जी का है। अरुण मंडल जी सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, लेकिन फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं। कपूर चंद जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा, दीवाना मैं चला। और बबीता जी लिखते हैं कि ये रेल वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड, थैंक यू सो मच। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि अम्मा जी मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं सुपर लाजवाब डिमांड, मजा आएगा सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं अरुण मन्ना जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर सुनीता गोप जी का डिमांड मैं सुनवाता हूँ आप सभी को। सुनीता गोप जी जब भी आती हैं आज के दिन वो भोजपुरी डिमांड ही लेकर आती हैं। तो ओके जी, तो आपके गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी।

वेलकम है का। और बर्जू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बर्जू जी आपका। और देखते हैं कि हमारे साथ जी हम भी जुड़ गए हैं रेडियो हॉट एचआर से जो दीवाना बना दे, तो बहुत बहुत वेलकम है भाई भैया बर्जू जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड बहुत ही पसंद है ये। और आत्माराम जी लिखते हैं अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुनकर दिल खुश कर हो गया है। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी आपको पता है हमारे ग्रुप के से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, जरा सोचिए। अच्छा, शायद हो सकता है कि उनका गाना यानी कि प्ले नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सभी मैं कोशिश करता हूँ। और मीना जी लिखते हैं कि ऑसम डिमांड है, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं सुनीता गोप जी की डिमांड शानदार लगी है। और निशाल ड्राइवर जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे जाकिर खान जी का ही है। और जाकिर खान जी भी भोजपुरी गाना ही लेके आए हुए हैं, लिखते हैं कि तुहर माथे की बिंदिया। ओके

बिल्कुल इन तोहर माथे की बिंदिया हमारे निंदिया चुरा के ले गए सच में चुरा के ले गए जी। और काजल झका जी लीते गाना बहुत अच्छा लगल मजा आ गया सुन के। और सुनीता गोपी जी लीते बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। संजय पटेल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है और एस खानम जी लिखते हैं ब्यूटीफुल भोजपुरी सॉन्ग और अशोक पाल जी लिखते हैं कि अच्छा और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं बहुत ही सुपर हिट पसंद चल रही है मजा आ रहा है सुन के। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड आर के रवि जी का है आर के रवि जी सुनना चाहते हैं ओ जाने जाना इंजॉय कीजिए।

0: ओ माय गॉड, आज तो अनलिमिटेड छूटने वाला है, बहुत से दोस्तों के ग्रेट डिमांड छूटने वाले हैं। सॉरी, अभी तो 28 यानी 29 ऐसी अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि भोजपुरी डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये क्या नाम है, विभूति शरण जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, दिल खुश करने वाला है। हीरामन जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आदरणीय अमन सर जी, जाकिर खान जी की फरमाइश, भोजपुरी गीत बहुत ही सुपर से ऊपर, और आज का कार्यक्रम भी बहुत ही लल्लन टॉप हो रहा बानी।
0: अच्छा,
1: मैं सुन रहा हूँ आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: ओके, वेलकम जी आपका भी। और बरजू जी लिखते हैं कि हाँ आपका आपका तो डिमांड आया हुआ है हमारे पास, लेकिन कोशिश करते हैं। जाकिर खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। शिल्पा बहन जी लिखते हैं जाने जाना बहुत ही बढ़िया गाना, मजा आ गया सुन के। बबीता जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल गाना मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ बबीता जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेस्ट गाना है। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे किन का है, जरा सा मैं बता दूँ। ये डिमांड है हमारे

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।
1: ओके जी, तो अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि पर्वत राय जी का है, सुनना चाहते हैं दुर्वादियों से। और ये गाना सबसे पहले सर्वेश भगत जी, अजय भगत जी, आर के रवि जी, काजल झक्का जी और निर्मल जी, साथ ही साथ जितने भी दोस्त हैं सभी को सुनवाना चाहते हैं। तो सुनवा रहा हूँ आपके पसंद का ये गाना दुर्वादियों से। आ रही है पायलों की छंझन, इंजॉय कीजिए।

और धीरे धीरे से मुझे गाना आ रहा है याद। यहाँ पे एक यानी दीक्षा जी ने गाना भेजा है धीरे धीरे, कोई यानी स्वाति मिश्रा जी गाना है ये सुनना चाहती हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि इस गाने के बाद यही गाना प्ले करता हूँ धीरे धीरे, उसके बाद मैं फीडबैक शामिल करूँगा। है कि नहीं?

0: बिल्कुल धीरे धीरे। वैसे गाना बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया सुनकर। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है और इनका गाना ही जो यानी कि विनर बने हुए हैं हमारे प्रमोद जी, इनका गाना मैं अगला प्ले करूंगा, उसके बाद और दोस्तों का गाना प्ले करूंगा क्योंकि समय कम होते जा रहा है मेरे पास। एमडी यानी कि परवेज आलम जी लिखते हैं कि सभी श्रोताओं की सहायता से प्रोग्राम बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हो रहा है और प्रोग्राम को सफल बनाने में अमन जी आपकी भी मेहनत साथ रखती है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर जी आपका और सर्वेश भगत जी।
1: जय अमन सर जी, पर्वत राय जी, इसका पहले सुनीता गोप जी और उसका बाद शाकिर खान जी और उसका बाद आर के रवि जी, सभी आदमी अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके बाद आमना खान जी लिखते हैं बहुत ही नाइस प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और राय पापा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आएगा सुन के। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। और दीपक कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी जैसे जैसे आपका प्रोग्राम समाप्त हो रहा है हमें बहुत खाली खाली सा लगता है। और अमन जी आज के गाने भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं जी, बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, सभी दोस्तों का डिमांड बहुत लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं सभी को। और इस खालम जी लिखते हैं धीरे धीरे ये सॉन्ग बहुत ही मस्त लगा है। वैसे स्वाति मिश्रा का सभी गाने बहुत प्यारे, अगला भी स्वाति मिश्रा का ही है जो आपने यानी पिछले हफ्ते यानी भेजा था ना आपने, यानी कि सोलो सॉन्ग भेजा था, मैंने उसको डबल सॉन्ग यानी कि डुअल बना दिया है, वो सॉन्ग मैं प्ले करने वाला हूँ यानी कि प्रमोद जी के पसंद पे। और गजानंद जी लिखते हैं कि धीरे धीरे ये वाला प्रोग्राम भी अच्छा लगा है। विभूति जी लिखते हैं कि जिनका भी रिक्वेस्ट है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर भाई यानी प्रमोद जी इंजॉय कीजिए इस गाने को, दिल ना बिकाओ हमारा।

और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाना, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। और प्रमोद जी लिखते हैं लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। गजानंद जी लिखते हैं दोस्त प्रमोद जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है। और एस खानम जी लिखते हैं कि वाह डुअल सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसके बाद अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे एमडी फैज अहमद जी, एमडी फैज आलम जी का, एमडी फैज आलम जी एंजॉय कीजिए।

अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो दीपक कुमार गायकवाड़ जी का प्ले करने वाला हूँ। अनिल कुमार जी लिख देंगे बैक टू बैक, सभी गाने बहुत अच्छे लगे, मजा आ गया सुन के। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और विभूति जी लिखते हैं कि वाह एमडी फाइव जी की पसंद बहुत ही शानदार। तो भाई हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी आप सुनना चाहते हैं पल भर के लिए कोई।

झूठा ही सही। और फिलहाल राधा किशन को लिखते हैं बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, एमडी फैज जी का धन्यवाद देते हैं। और बर्जू जी लिखते हैं कि अमन सर जी अच्छा ओके मैं देखता हूँ। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है भाई, प्रमोद जी एमडी फैज जी सभी के पसंद, थैंक यू सो मच। और आर के रवि जी लिखते हैं कि उम्र भर की वफा मांगते हैं तुमसे, और ना ख्वाबों की कोई जहां मांगते हैं तुमसे, बस एक पल भर के लिए यानी प्यार दे दो, यानी कि तहत दिल को हम तो बस यही खूबसूरत सा लम्हा मांगते हैं तुमसे, वाह क्या बात है। और विभूति भूषण जी लिखते हैं कि ये देवानंद पर फिल्माया हुआ गाना अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सुभाष तिवारी जी का है, सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: सुनिए, इसके बाद आते हैं तो फिर रिएक्ट शामिल करते हैं, और ये है अभिषेक तिवारी जी का गाना।
1: झा

0: वैसे से फीडबैक भी मेरे पास आए हुए, शामिल करता हूँ फीडबैक को।
1: बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पसंद हमारे एमडी फैज जी की, मजा आ गया गाने में, मुझे बहुत पसंद है ये गाना।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
0: ये दीपक कुमार जी का था, दीपक कुमार जी का।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा

0: सही बहुत ही सुपर लाजवाब मजा आ गया।
1: ओके धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये दीपक कुमार गायकवाड़ जी का था। रवि जी लिखते हैं कि वाह भोजपुरी का 440 का झटका लगा, मजा आ गया सुन के एकदम। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि यानी कि ये तो गाना तो कुछ अलग ही हटके है, बहुत ही मजेदार भोजपुरी गाना है। अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: सावन चलता भादो बीत जाई, जब कुआर आई तब न खेत जोताई, तब न धनिया रोपाई, अभी कहाँ से रोपाई, अभी तो सब खेत में पानी लागल बा।
1: अच्छा कोनो बात नहीं कि हम रोप दे, बहुत सारे उपाय बार रोपे खाती। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही भोजपुरी डिमांड के लिए, दिल खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। एस खानन जी लिखते हैं कि वेरी फनी सॉन्ग है धनिया वाला, जी बिल्कुल। और यहाँ पे निकला जी लिखते हैं कि ओ माई गॉड व्हाट ए काइंड ऑफ सॉन्ग, जी बिल्कुल ये भोजपुरी गाना है ना। और खुशबू कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बाबूलाल अंजान जी लिखते हैं अभिषेक तिवारी जी का डिमांड शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और काजल जका जी लिखते हैं गाना बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा है। और MD जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि बबीता जी का है। बबीता जी क्या सुनना चाहती हैं, बबीता जी का ऑडियो सुनाते हैं पहले आपको।
3: नमस्ते मनसर जी, नमस्ते। मैं ये गाना भेज रही हूँ, गाने के बोल हैं, छतरी न खोल उड़ जाएगी, हवा तेज है उड़ने दे भीग जाएंगे, बारिश तेज है। ये गाना है तो इस गाने में आपको और मुरा जी को, बिटिया रानी को, रेडियो हिस्सा के जितने दीवाने दीवानी सबको शामिल करती हूँ, तो सुनवा देना। धन्यवाद। और लता जी और किशोर जी की आवाज़।

0: और यहाँ पे यश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं यश प्रसाद जी आपका। और यहाँ रवि जी लिखते हैं कि अब यानी कि तेरे होने तक ही थी खुशियों का शाम, अब तो हर लम्हा बन गया है दर्द का पैगाम। यकीन नहीं तो कभी तुम मेरे थे, अब तो यानी तेरी याद ही बचे हैं मेरे नाम। बिल्कुल, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: माय गॉड बबीता जी, सो नाइस सॉन्ग। हेलो एवरीबॉडी, हेलो खुशबू कुमारी, दिस इज निकलस। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बबीता जी, यू गोइंग टू सेंड सम गुड सॉन्ग टुडे, वेरी गुड।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना था आपका। और अजय भगत जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड प्ले हो रहा है। आमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, हवाएं चल रही हैं, बरसात का मौसम भी है हमारे यहाँ। और निषाद राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ रहा है सुन के। और ज्योति भूषण जी लिखते हैं कि वह क्या गाना है, बिल्कुल आज के मौसम के हिसाब से है गाना है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये बबीता जी का डिमांड बहुत ही अच्छा लगा है। और एमडी जलील जी लिखते हैं कि ओके, मैं कोशिश करूंगा और आज के लिए तुम मैं माफ़ी ही चाहूँगा, शायद हो सकता है। और फिलहाल आज के जो हुए थे यानी कि विनर हुकुम चंद जी, आती है तो चल ये सुनना चाहते हैं, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

और आत्माराम जी लिखते हैं कि बबीता जी का सुपर डुपर हिट लगा है, और निकला जी लिखते हैं कि दिस इज रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, ओके। और विभूति भूषण जी लिखते हैं कि बबीता जी का रिक्वेस्ट के लिए धन्यवाद देते हैं, और निषाद राय बोले जी लिखते हैं कि भाई हुकुमचंद जी की फरमाइश अच्छी लगी है, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड। इसी बात अगला जो डिमांड है वो है एस खानम जी का, और एस खानम जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा गाना जा सजना, उसको बुला दिया।

और परब तेरी झूठी मोहब्बत को हवा दिया और तू समझता था कि तेरे बिना जी ना पाएंगे। जा सजना, हमने भी तुमको आखिर भुला दिया। वाह क्या बात है। हुकुम चंद जी लिख दें। थैंक यू अमन जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को देखते हैं कि इस दर्द भरे जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, आई लाइक दिस सॉन्ग। ओके जी, काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और विभूति भूषण जी लिखते हैं कि इस कारण जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे, यानी नाम है उनका, इन विष्णु चंद्र जी भाई, इन्जॉय कीजिए इन विष्णु चंद्र जी।

और मैं बताना भूल गया था कि आरजे आकांक्षा जी का रिक्वेस्ट मैं ओपन करना भूल गया था, आई एम सॉरी। अभी आप उनके पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कभी कभी मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आई एम सॉरी। और अभी उनके पास अपने डिमांड भेज सकते हैं क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट बॉक्स ओपन कर दिया उनके लिए। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, बहुत सारे फीडबैक तो अभी है मेरे पास, लेकिन फीडबैक को अभी साइड में रखते हुए अगला जो डिमांड है हमारे रवि मोहड़े जी का, और ये सुनना चाहते हैं चांद जैसा चेहरा तो हार दिल हमारा।

इस गाने का मतलब है कि हम तुम्हें यानी कि कैसे बताएं कि तुम्हारा वो चांद जैसा चेहरा जो है वो मेरा दिल ले गया है, यानी तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे प्यार हो गया है, और मैं तुम्हें यानी कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये गाने का मतलब है। और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं, अर्जमन जी गाना बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद।

ओके जी, और अगला गाना मैं नहीं प्ले करूंगा, एक अभी अभी हमारे शायद यानी कि किसी ने गाना का डिमांड किया था, मुझसे गलती से वो रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने आरजे आकांक्षा जी के लिए भेजा था। आप लोग प्लीज, जिनका यानी कि मैंने मतलब गलती से मिस्टेक हो गया मुझसे, फिलहाल यानी कि मैं कैनाथ जी का गाना प्ले कर रहा हूँ, और कैनाथ जी सुनना चाहती हैं पिया जी के मुस्की, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल एक्चुअली देखिए, ये सिर्फ यानी के भोजपुरी जो गाने होते हैं वो सिर्फ आज यानी मिक्स मस्ती चलता है, सिर्फ आज के दिन। भाई सुनील कुमार जी, आप ऐसा मत समझिए कि भोजपुरी चलता है हमेशा, नहीं, आज के दिन भोजपुरी और मिक्स हिंदी दोनों मतलब मिक्स चलता है, और आज के दिन भोजपुरी गाने की डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा हिंदी प्ले करने की, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, लोगों की डिमांड के आगे मुझे लेकिन अब स्पेशली भोजपुरी शो आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हर सैटरडे को आएगा। और अगला जो डिमांड है यानी पूजा भास्कर जी का सुनवाता हूँ मैं, एंजॉय कीजिए।

ओके आई एम सॉरी, बहुत से दोस्तों के डिमांड छूट रहे हैं और अगर मैं नाम बताना शुरू करूं तो मतलब क्या ही बताऊं। जैसे कि सरोजित शेट्टी जी और निकेत, यहाँ पे कपूर चंद जी और कुंता बेनी जी और यहाँ पे निर्मल यानी किराय जी और शिल्पा बेन जी और अशोक पाल जी और राधा कृष्ण गोप जी, अजय भगत जी, देवराय जी और बरजू जी और ईशु भगत जी, एम डी जलील जी और सुनील कुमार बांका बिहार से, और मैं बता दूं यानी कि विभूति भूषण जी और सुरेंद्र पाल जी और संजय पटेल जी, ये सभी की डिमांड छूट रही है। इसके लिए हम सॉरी। नेहा जी का आखिरी गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ, वो देश रंगीला। इंजॉय कीजिए।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: हे यो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.